0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेला नशाला, हेला नशाला।
2: चंगा, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: गाड़े मिहार में वाणी एकार कर दी हमें ने ठिंगा फकोरिया में ता एहुन ते निंगे होवों शो कोरिया गेंदा ने एकार कर दी थीरी सिंग माह हमें अनन्नो कोला फवाय हुन ते निंगे ते नरके से इतरु बैवरे का गुड़ा ले फमी वाणी मिफा हारु शाहुआ अस्सलाम वालेकुम शाहु
1: वालेकुम सलाम
0: शाहु इस बालीवे
1: बायन
0: बायन उन आडू ने थी तो
1: हाँ
0: कबा कौन खामे कती उड़े ने
1: बड़ा
0: शुक्रिया उफावे बदल अदिस वाणी बैवर वांगे शाहू अरे बिजी कोले मम्मी लावा जहाल दी फंड कैस बदल कोला आना

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: ऐसा से बाई लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या बाईट तू जाऊन उठन बिटन लाऊन ये की तू तेरे भाई के राडे नहीं देख तू इधर कच्चे तू
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के निस्ते आ देरु में को में हो मत वही के मिंदरु दे जहार रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुद्ध दो हो गेरे बार जहार
2: नॉक नॉक तेरा बाप
3: का है वर्जन 2.0
4: Version 2.0

0: ஆசா ஆசை. பை லவதாகி நுனிமே வாககதகி ஏ வாககத மிஹாரு ஆ அடகா ஆ ரூஹகாய் ஏ ஃபோரியா ஏ ஜோஷ் கெங்குஸ்தினி முளிம் ஏஹிம் துனியாகா
1: दिवाळी ऐसा क्या वाईट तू जाऊन उठ न बिट न लावणी की तू तेरे भाई के राडे नहीं देख तू इधर कच्चे तू
2: हाव अदे रिमिक्स की बदले नो एकम को लवे के नस्ते आ दिरु में
0: को में हो मत वह के मेंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अदे बुद दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
4: Version 2.0
5: Version 2.0